0: असली रूप कौन दिखा सकता है उसे?
1: तुम्हारे करतूत, करतूत, करतूत,
0: मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है उसे?
2: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।